मैं बंगाली मैं भी छिड़की में ना खोलो बंद खिड़की निंदिया जाए तो वो चल चले हाय हाय

मित्रों आज है आकाशवाणी भारत भवन प्रसारण एक्सेस रेडियो पर आज ना कार्यक्रम में आपनु स्वागत है आपनो कार्यक्रम है मित्रों बॉलीवुड में घना गीतों राधा अने कृष्ण मीरा ऊपर फिल्माया है अने आज नी संचालिका निलिमाए आज ना कार्यक्रम में एज ध्यान में राखी ने फिल्मों में थी राधा कृष्ण मीरा ना गीतों कार्यक्रम में शामिल करिया है तो मित्रों आपनु अही स्वागत है आज ना कार्यक्रम में आज ना सुविचारो भागवत नो आश्रय करे ते भगवान बने डोंगरे महाराज ना आ विचार रत्नो छे भागवत शास्त्र ए मुक्ति शास्त्र छे अने भागवत भव रोग नी दवा छे कहेवानो भावार्थ छे मित्रों के भागवत गीता वाचो एमांथी समझो कार्यक्रम में कहूं चटवाणी संचालिका नीलिमा भोला साथे बीना पटेल अने हूँ मुकेश आपनु स्वागत करिए छे पहलू जो गीत सांभर्यु आपने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम नुं हतुं वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी खास करीने हाल की फिल्म जो छे एने घणा फिल्मों आमां कॉन्ट्रोवर्शियल छे कारण के समय थी तेओ आगळ चालीने फिल्म बनावी छे पण जे बेकग्राउंड में गीत वगैरह हुई छे ये समय नुं छे समय प्रमाणे नुं छे तो सांभळीए फिल्म लगानुं गीत

भले कान्हा किसी को पीस मिले, हमने तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले। इसलिए राधा चले, इसलिए राधा चले, बिना सोचे समझे, इसलिए राधा चले, इसलिए राधा।

0: अलग बोली अलग भाषा है, बात मैनों से हो काना की यही आशा है।
1: काना की ये जो नैना है, जिन्हें गोलियों से कहना है। काना की ये जो नैना है, जिन्हें गोलियों से कहना है। मेरी नजरिया हुई बाबरिया पर बरसी कोई गुजरिया।
0: काना का प्यार किसी गोपी के मन में जो

आप सुन रहे एक्सेस रेडियो पर थी आकाशवाणी भारत भवन नु आशी प्रसारण। चलो मित्रों आगे सांभिये आ एक गुजराती गीत। एकलो भेद कानूडा तारी अने मारी प्रीतिमा, एकलो भेद कानूडा तारी अने मारी प्रीतिमा, तू छड़े मने छड़े चौक ने, हूँ सताऊ तने एकांत में।

घट रही दीपक बिन ज्योति, चंदा बिना चांदनी कैसी, सूरज बिना धूप न होती, व्यर्थ पड़ा माला बिन मोती, घट रही दीपक बिन ज्योति, चंदा बिना चांदनी कैसी, सूरज बिना धूप न होती, बिन राधा के कहाँ है पूरा नग्न नागर का नाम।

जैसे चलती धारा साथ है जैसे नदी किनारा साथ है जैसे जल की धारा साथ है जैसे नदी किनारा साथ है जैसे नील गगन के सूरज।

मित्र आसमरी आठो आकाशवाणी भारत दोनों प्रसारण भक्ति संगीत ने अन्य विराम आपने जीवन ना बाधा मार जोड़ाई तो मित्रों कृष्ण भगवान छे के नसी के भगवान छे के नसी ये तो हुए नसी जानतो पण एवी श्रद्धा एवू छे के कई छे जे आ बधी वस्तु ने एक साथे गुंदर थी जोड़ी ने इन्हें राखेली छे मने कोई ये कह्युं हतुं के भगवान कृष्ण जे छे અને દરેક ભગવાનની મૂર્તિ હોય કે જે હોય એમાં ફોટા હોય